0: पर ये भी सच है कि ऐसी सब कुछ नहीं समझ सकते। एक बार श्री गुरु हर राय साहब जी नू कुछ सिखा ने यही सवाल पूछे,
1: गुरु साहब महाराज साडा एक सवाल है।
0: अते गुरु जी ने उन्हां दा सवाल सुनिया,
1: असी बहुत सत्कार नाल गुरबाणी दा जाप करदे हां अते असी हर वेले ही जाप करदे रहंदे हां, पर कदे कदे सानू अर्थ समझ नहीं आउंदे कि असी की जाप कर रहे हां। ते जेकर सानू बाणी समझ ना आवे तो की जाप करन दा फायदा है?
0: गुरु जी ने उन्हां दे सवाल दा उस समय उत्तर नहीं दिता, ते गुरु जी सिर्फ मुस्कुराए। गुरु जी ने सही समय का इंतजार किया ताकि वह उन्होंने उत्तर देने की बजाय अनुभव द्वारा सिखाउण। गुरु जी हमेशा सानू अनुभव तो ही सिखाते हैं कि तुसी जानते हो कि उन्होंने की किया। उन्होंने कुछ दिन तक इंतजार किया, एक दिन गुरु साहब उन्हां नाल घोड़े ते सवार होके जा रहे सन। गुरु साहब ने सिंगा नू रुकण लई कहा अते पुछया, की तुसी उस मिट्टी दे घड़े नू देख रहे हो?
1: ओ जो जमीन ते टुट्टिया होया है।
2: जी गुरु जी दिख रहा है।
0: गुरु जी ने उन्हां नू कहा, उस घड़े दा एक टुकड़ा लियाओ। अते उन्हां विच्चों एक सिख उत्तर गया ते टुकड़ा चुक लिया आया।
2: गुरु जी ए है जी,
0: इस घड़े विच क्यों सी? क्योंकि यह धुप विच पिया होया सी, इस करके धुप नाल घिओ पिंगल रहा सी, इस करके धुप नाल घिओ पिघल गया सी, अते घड़े दे अंदरों पिंगल के एक लकीर बना के मिट्टी च समा रहा सी। श्री गुरु हर राय साहब ने समझाया, गुरबाणी सिमरन दे नाल इसे तरह हुंदा है, भावें सानू गुरु दे शब्द समझ नहीं आउंदे, पर जेकर असी भगती भाव नाल जपदे हाँ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਘਿਓ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪਿੰਗਲੇ ਹੋਏ ਘਿਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2: ਮੈਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।
0: ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।
2: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
0: ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ।
2: ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
3: ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ,
0: ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕੀਏ। ਜਪੋ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ।
4: ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ।
5: ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਸੀਕਨੈਟ ਰੇਡੀਓ, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
6: Dream Big, Little Singh. Written by
7: Curious Khalsa.
6: Illustrated and animated by
7: Paradeep Singh.
6: Published by
7: Brave Lion Books.
6: Produced by
7: SeekNet.
6: Dream big, little Singh. You are the son of a king. You can change the world around you. Let love, humility, and compassion surround you. Shine bright and realize the strength within you. Find inspiration from Gursikhs who follow the Guru. Be a true friend, like
7: Bhai Mardana Ji.
6: He was always ready with his rabab to join Guru Nanak
8: to spread Vaheguru's message in every direction.
9: Mera pran sakhai sada naal challa. Sakhai means friend.

0: उस बुरे दोस्त ने घर विच बनाईयां मिठाईयां गुरु जी नूं नहीं दित्तियां जो उसने वायदा कीता सी। इस दी बजाए उसने शराब पीती, सिगरेट पीती अते अपने पैसे दा जुआ खेडिया। उसने उना लोकां नाल अपना समा बिताया जो कुछ चंगा नहीं करदे होए अपनी जिंदगी बर्बाद करदे हन।
1: गुरु जी नाल समा बिताना की हो जा लग्या?
2: अच्छा ओ गुरु जी, हाँ चंगा से बड़ा आनंदमय से ते बड़ा ही चंगा से।
1: की उन्होंने सारी भेंटा स्वीकार की थी?
2: पेंटा केड़ी पेंटा? अच्छा मिठाइयां, हाँ मिठाइयां उन्होंने रख लिया थे क्या? की हाँ आशीर्वाद, हाँ कुछ दे कुछ बहुत आशीर्वाद। हाँ
0: इस दौरान दूजे दोस्त ने अपना समा गुरु जी दी अते उना दे संत रूपी भगतां दी संगत विच बिताया सी। हे गुरु जी, मैं तुहाडे तो कुर्बान जांदा हां, कृपा करके पेंटा स्वीकार करो, इस दी वरतों गरीबां दी सेवा लई करो। हे महान गुरु, मैं तुहाडी सेवा विच सदा हाजिर हां, कृपा करके मैनू अपने चरणा विच जगा दियो। हर रोज उदोवें काम तो अपने घर वाल इकट्ठे तुर के जांदे अते फिर अपने अलग अलग राहां ते चले जांदे। एक गुरु जी कोल उना दे वचन सुनन,
3: वाहे गुरु,
0: शब्द गाउन,
3: वाहे गुरु वाहे गुरु,
0: दान करन अते साध संगत नाल समा बिताउण लई चला जांदा। अते दूजा दोस्त उस औरत कोल चला जांदा। उसने अपनी पत्नी अते बच्चियां नूं झूठ बोलिया अते उनां दी पेटां दी दुरवरतों कीती। उसने उनां दा पैसा जुआ खेडण, उस औरत नाल शराब अते सिगरट पीण विच खर्च कर दिता। उसने अपना समा बुरी संगत विच बिताया, उनां नीवें लोकां नाल जो अपनी जिंदगी खराब करदे सन। इह कई दिनां तक हर रोज हुंदा रहा। आखर विच एक दोस्त ने कहा,
4: मेरी गल सुन, तू अपना सारा समा गुरु जी दे कोल चंगे काम करदे होए बितौना है, जदकि मैं अपनी पत्नी नूं झूठ बोलदा हां अते मैं अपना सारा समा माड़े कमां विच बर्बाद करदा हां, पर फिर भी अपनियां जिंदगियां नहीं बदलियां। तू भी उही है जो पहला हुंदा सी अते मैं भी उही हां, तां फिर की फर्क पैंदा है कि असीं चंगा करिए जां माड़ा? अपनी जिंदगी तां उवें है जिवें पहला सी।
0: दूजे दोस्त ने कहा,
5: आओ आपा ये सवाल उस ईश्वर तो पुछिए, मैनु विश्वास है कि आपा नु सही उत्तर मिलेगा। कल नु मेरे गुरु जी दे मिलन तो बाद अते तेरे ओ सब कुछ करन तो बाद जो तू करदा है आपा एथे ही मिलदे हां, आपा इस रुख हेठा ही मिलांगे अते आपा नु जवाब अपने आप मिल जाएगा।
4: इंज ही करदे हां, मैं देखण लई उत्सुक हां की होण वाला है।
5: ठीक है मेरे दोस्त, हुण आपां कल ही मिलांगे।
0: अगले दिन उह गुरु जी कोल गया अते संगत दी निघी गोद विच बह के उसने रूहानी वचन सुने अते गुरबाणी दा गायन कीता। दूजा दोस्त उसे ही औरत कोल दोबारा गया। ओ इंसान जो हमेशा माड़े काम करदा रहा तय हुए टिकाने ते पहला ही पहुंच गया।
4: की तू इत्थे है दोस्त? नहीं।
0: उन्हें इंतजार कीता, होर इंतजार कीता अते जदों ओ इंतजार कर कर के अक गया ता उसने मिट्टी विच कुछ लकीरां खिचनियां शुरू कर दितियां। मिट्टी विचों उसनूं सोने दा एक टुकड़ा मिलिया।
4: सोना?
0: उसने होर खोदिया, उन्हूं कुजा मिलिया। उसने सोचिया,
4: अज मेरा दिन चंगा है, हो सकदा है इत्थे होर भी सोना होवे।
0: पर उस कुजे दे अंदर सिर्फ कौड़ा सी।
4: कौड़ा? ओहो, ए ता बड़ा निराशाजनक है, पर शुक्र है मैनू एक सोने दा टुकड़ा ता मिलिया, चलो यही सही है।
0: फिर थोड़ा समा इंतजार करन तो बाद दूजा दोस्त गुरु जी दी संकट तो वापस आया।
3: ओह,
0: ओ लंगड़ा रहा सी।
3: आए मेरा पैर।
4: की हो गया तैनू?
3: मैं गुरु जी दी संगत तो होके वापस पैदल चल के आ रहा सी अते मैं तिलक गया ते मेरा पैर एक वड्डी कंडेदार झाड़ी ते पै गया। ओ मेरे पैर दे विच डूंगा खुब गई, माड़ी किस्मत आ मेरी।

ये कहानी पसंद आई होवे तो इस तरह दिया हो रही वीडियो सब्सक्राइब करो।

0: सारी उम्र अपने परिवार लिए भोजन की चिंता विच गुजार दित्ती हुंदी। इस दी बजाए तुसी मेरी जिंदगी नूं बर्बाद होण तों बचा लिया है। मैं असल विच उन्हां दी सफलता विच इक रुकावट सी, अते जदों मैं दूर सी तां हर चीज़ की बहुतात सी। हुण मैं उही करांगा जिवें तुसी मैनूं सिखांदे हो। तुहाडी रहमत सदका मैनू सच्ची समझ ते आनंद प्राप्त होया है।
1: सारी जिंदगी परिवार की चिंता विच बतीत कर देंदे हन। ओह अपनी जिंदगी का असली मकसद भुल जाते हैं अते राह तो भटक जाते हैं। लोड़ है कि हुण असी गुरु की सिख्यावां नू पढ़िए अते अपनी जिंदगी विच अमल करिए। सेवा अते सिमरन करन नाल ही असी इस संसार समुंदर तो तर सकते हाँ। हुण तो ही अपना ध्यान गुरु वल लाइए अते अपना जीवन सफल बनाइए। गुरु जी की उस्तत करन नाल ना सिर्फ असी अपार आनंद प्राप्त करांगे पर जिंदगी विच भी बरकतां प्राप्त करांगे।

आप सबना दा निक्की जी कौर जिंद दे जीवन विच जी आया नू। अज जिंद कौर दा उस दिन नवे स्कूल विच पहला दिन है। वो बस निकलन तो पहला अपने सवेर दा नितनेम कर रही है। वो सोचती सी कि अज सब कुछ ठीक रहेगा, पर जिंदगी एनी सौखी नहीं। जिंद कौर तुहानू एक आम जी कुड़ी जरूर लगेगी, पर आम दी परिभाषा तो कितने दूर है। जिंद कौर इन्ना पाठ करती है, इन्ना नाम जपती है कि सचमुच उसके कोल रिद्धियां सिद्धियां हन कि वह दूजे लोगों विच सफर कर सकती है।

0: बस एक औरत है हाँ, इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगदा है ए जंग करना जान दी है, पर मैनू नहीं हरा सकदी।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते भारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि उह कहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान तार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस ये कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानती सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वह मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहला तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निगी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया, ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया तां तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
1: ए शक्ति गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदी है। साडे नाल अपना मेल जरूर रखियो सिखी विच रह के।
4: उदों जिंद कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रा नू अपने सामने प्रगट होंदे देखदी है। उन्हां दे पिछे होर भी काफी शहीद सिंह हन।
5: तुहाडी सच्ची शरदा दे पलां विच असीं तुहाडे नाल हां, ते तुहाडे लोड दे वेले असीं तुहाडे नाल खड़ांगे। कदे लुकियो ना, दिखा दो दुनिया नू कि तुसीं कौण हो।
3: मैनू नहीं लगदा कि मैं दोबारा करजी दरांगी।
5: हा हा हा, शाबाश। पर जे तुहानू कदे डर लगे भी, उदो समां है योधियां दीआं वारां गाउण दा।
3: अच्छा, ओ केड़ी वार है?
5: हा हा हा, साडे कोल बहुत सारियां वारां ने।
1: मैनू लगदा है इस समें ए वार साडे गाउण